0: Primary health care kya hai? Primary health care wo service hai jo aapke liye Alice Springs mein available hai. Is service mein aap GP, agent care, midwife aur dentist ki suvidha istemal kar sakte ho. Aapko apne visa ke mutabik ye services mil sakti hai. Aapke sawal ke liye aap Miska ko 0889528776 पर रिंग कर सकते हैं या उनके वेबसाइट पर mishka.org.au पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इस प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया मिस्का, जिसको सपोर्ट दे रहे हैं नॉर्दर्न टेरिटरी प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क.
1: The Multicultural Access to Primary Healthcare Program is managed by Multicultural Community Services of Central Australia and supported by the Northern Territory Primary Health Network and 8CCC.